सुड़ावा पार कुड बोल करे आहार श्रम धर्म का डेरा दुर नानक कुड़रा भरपूर मत है टिका तेड़ दुध का हत सूर्य जगत का साई नील वस्त्र पर होवे परवान मले।

मत पिटे वे मत पिटे वाना साडा पिटे तन पिटे पेट करे मंजूटी चुली परे कहो नानक सच्चे ते आईए सुच होवे ता सच पाई।

ना लियाने दोस्ती कदे ना विरास, जे हा जाने ते होवरते वेखो को निर्जास। वस्तु मांदर वसम आवे दूजी होए पास, साहिब सिती हुक्म ना चले गए बने अरदास। कूड़ कम

ओधरे वाहिगुरु गावे ते ओए दरे सुन ते ओधरे वाहिगुरु बिन से बाप घनेरे बिन से बाप घनेरे सचिया पातिया बिन से बाप घनेरे पासी पारे मगैदे कोई तारे वाहिगुरु पासी पारे मगै

नानक दास तेरी शरणाई वागुरु सदा सदा बल्ले हारे सदा सदा बल्ले हारे सचिया।

सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरा घर नंद बधाई तो ते घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दर्शन दास तुझे आगे बिनवता नानक दास।

पार हुए सब मिलेंगे पचे सरंज हुए दोहरा उठ गई सभा मलेच की कर कूड़ा पासान लंका बाजे पदे कहने कलंक उतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते से अंभव सुमन सर्वदा सब जुगते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे पंगन भूते देख ते गोफ ते अनुसत बेदर गया अवदस नानक गुरु गोविंद सिंह सिर काल की सहाय दरबार में तेरो दरबार अचित कम से निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबार।

हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं रटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि।

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होई के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते काछ माछ केते उन को करत भज केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नभ बीज अच पच को करेंगे भज के तक प्रत जो है।

ज्यों अतेज मैं अतेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है। कित गंग बास कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूमै गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हरे मडी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपन।

नाग बाने कहूंगा रडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतन प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साज

अनुभव प्रकाश या छह स्वरूप अद्वय अनासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगात करता सदीव हरता सनात सन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र ब्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतपान जय जात पात ने सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम वरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाव नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अखया भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत गाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक जुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कूक काव कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पवन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र बच्छ नई तदब देव हो वत प्रताक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र

तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तद्दास पायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सोगनम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ वस्वमेध मख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ कर्त जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई जगन ताप कई जबत उर्द लटकंत जाप कई जबत जोग कल्पं प्रजंत नहीं तदप दास पायतन अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं बर्त पान भव कर्त हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फूकटो सर्व धर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम्पह जुगण जूह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भुवंग दबताप सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद व्यंगन खंड अभूत छेद छ्यंगन काल अपाल दयाल सुवंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रच्यंग देवा देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रच्यंग सर्व मकीन मका जय राख न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भूख भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रच्यंग जत्रि छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्राह्मण रच्यो दस चार करी नवखंड सच्यो रज तामस तेज तेज क्यो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नकंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तजोत भुजंग ये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मातन ब्रात सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुवंग जे जम्प किन्नर जछ जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक बांध गणंग भवभूत भविख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास की ओ फल फूल कली वो मेरा काश निवास तंग रज रोजे का चंद्र वितंग दुत चंद दिनी

अगंज आदि देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न दात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेघ शेख भेक है सदीव विश्व वर्ण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व वर्ण है जिमी जमान के भी कह सदीव करम वरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानी है सदीव सर्वठौरम है विशेख अन्न मानिय न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नित नित कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भ्रम में बताइए अगंज आदि देव है कोस कैस पाइये तिमी जमान के भी के समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए

न सिंह है न स्यार है न राव है न रंक है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रूप रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है।

है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न चल है, न चित्र है, न चित्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैक है, न भेख है, न द्वी है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत भेक है, वलीय रूप राग रंग है, न द्वैक है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित चिहन वरण है, बेअंत है, अनंत तेज जानी है, भूम अभिज है, सदा छिज तेज मानी है, न आद है, न व्याद है, अकाद रूप लेखी है, अदुख है, अदाग है, अच्छे प्रताप पेखी है, न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न

गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्तपी विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है नजात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानी है सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह।

रूपरागनारेख रंगना जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सोधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात ना ताद जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजय चक्र चिन्ह न चित आद देव उदार।

नेत नेत पुकार हे शिव सकर ओम मुखचार सर्व सपत बतार के दर जापई जय जाप आदि देवा गाद तेजा नाद मूर्ति अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज थे राज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानव न ब्रह्म क्षत्रिय नमाहे वैष्णव के बिखे विराज सूर भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के नाधीन सर्व सबत पतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहंस फन नहनेत पूरन होत सोध सोध हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त थके महाकब गड़त गाड़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखयो न सेव कतेव देव दानो मूड मानो जच न जाने जेब भूत भव भवान भूपत आदनाथ अनाथ अग्न बाजले

कहाँ रंग राजा कवन हरक सो कह कवन को रोकी रागी कवन कहो तत्व मोह तवन दोहरा। कवन श्रेष्ठ को पुष्ट है कहाँ श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है।

आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र बिदुन सनमयक मथे दानव प्रहार नरक निवारण तम उदारण उर्दधे जय जय उसी मैकासुर मर्दन रम कबर्दन आदि वृत्ते डाबरूढ़ वंगे बर्ब वंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंकुड़िया।

चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन दुजा परंगण फणी पुंगारण ज्योत जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय होसी महघासुर मर्दन रंभक वर्दन छत्र चिते दामनी प्रहासन शुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचंजुद्ध प्रमासन हृदय नराचंदर अमृते श्रोणंत अचिंती नल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष्ट पजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणि अर्पुंकारण बाग बकारण ससर्वहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुम कारण द्रप मथे दाढ़ विप्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन भनम विनाशन धरम धुजे घुंगुरु गमंकण शस्त्र जमंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आदु कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उदार।

संकटे निवारण तम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकरखण आद अनिल अगाध फे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंगे के हरलंके आद तंके क्रूर कथे जय जय उसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज बिलोजन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहा से सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज

सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे। जय जय उसी मैं का सुर मर्दन विश्व विदुन संसृष्ट करे। दामनी प्रकाशे उन्तरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकर खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड पितल तले। अष्टायत बाहन बोलने वाहन संत पनाहन गूढ़ गते। जय जय होशी मैं का सुर मर्दन आद अनाथ अगाध वृत्ते। दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गा हे दुख हरे। गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते। जय जय होशी मैं का सुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते। कारण करीली गर्भ गहीली जोत जतीली तुंद मते। अष्टायत चमकण सत्र झमकण दामिन दमकण आद वृते। डुकडुकी दमंके बाग बबंके भुजा फरंके शुद्ध कते। जय जय हुसी मैं का सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते। चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दोदारण एक बटे पापान विहंडन दुष प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे। चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दोदारे मुंड मथे। जय जय होशी मैं खा सुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे। रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्डन विडाल बदे सरधार विपरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम तुझे। धूमराज विदुंसन श्रोणत।

तुरंत दुख दो करहत जेह नेत नेत सब भेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सेवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता तुरंत अद्वै अना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धरम जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब चल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कवन फेक कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र ब्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंतन दुरंत जेह नेत नेत निषिद्ध नुचरंत पायो न जाय जह पैर पार दीनान दुख तह ताउदार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जेह नेत नेत निषिद्ध नुचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संतु मार्ग नीमन गारे पक्ष पशु नग नाग नरादेव सर्व समय सबको प्रतपार पोकत है जल मैं थल मैं बल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत नहार दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमा पद भेद कदेवा बेदुचारे रोज ही राज बिलोक राज करो गुरुहान की रोज नटार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंग मेव न भेव लख्यो भ्रमस्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव धके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सो किन श्री पदमा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वैक सो भूत भविख भवान अभय अंत विहीन अनाथम अबाधाग दुख छिद्र छह लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डूलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पद्मापत लह है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाप सम्भूह न बेटन पावे और की बात कहा कह तो सो सो बेट ही के बट बीच बचावे जाच भुजंग सो दानव देव अभेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूमा काश पताल रसातल जाच भुजंग सब है सरण्याव पाय सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कतेव न वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन मै जह को अमितुज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बजहारे वेद न पाय सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद नाता गाद वेगद वैख जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेस्त बोधन के धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासतरण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय द्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जो कि जोग साधे पौन साधना कि तेग बांध अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पहचानने जे काम है। मर टाम गिल तेरे मन सो तपस्या कर दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रू के रुहल मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस न्यावे देवते दे आए दुख दे के दलत है। जिन्हें तोहे दयो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश कंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन सदा दीन कहियत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे बहु जतता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुखचार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते शस्त्र राशि किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महाधीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है। करते हैं विचार पै न पूर्ण को पावे पारता हित अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पार वार पाइये न पार पाइये न पार पे अपार के बखानी है। अद्वया विनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सुझटा के अन मानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को खर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सत्रण के साल है के मित्रण को बोगत के वृद्धता की वासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ के घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है के अपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पारावार हूँ को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हलप विद्या वह पूर्व भी न पार पावे या सत्य नाश है। देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेवनाथ अद्वया विनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है धरैया ध्रुम छाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है।

0: अमृत ज्ञान श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाहेगुरु जी की फाहे गुरु जी
1: सत

सूरज चंद निशत्र सची पत और सबै सुरपेखत सो खैंच कै मूंड दई कर वार की एक को मार किए तब दो सोम तो टूक वह भूम परयो तन ज्यों कल वत्र सो चीरत को दोहरा सोम मार कै चंडका उठी सो संख बजाए तब तुन घंटा की करी महामोद मन पाए दैत राज शिनमै हनेओ देवी ए प्रकार अष्ट करण मह शास्त्र गह सैना दई संघार सवैया चंड कै कोपना ओप रही रण मै असधार पई समुहाई मार बिदार संघार दय तब भू बिना करे कौन लराई कांप उठे अर तास ये तार शाड़ दई सब पौरख ताई दैत चले तज खेत इउं जैसे बड़े गुण लोभ ते जात पराई एत श्री मार कंडे पुराने चंडी चरित्रे सुंभ बध है।

ब्रह्म ते आद सभै भय पीते तेहि वै दैत पराए गए रणहार निहार पाए वे बल रीते जम्बुक ग्रेज निरास पए बनबास गए जुग जाम न बीते संत सहाय सदा जग माए सो सुंभ निसुंभ बड़े अर्जीते देव सभै मिलकै एक ठौर सो अच्छत कुंकम चंदन लीनो तच्छन लच्छन दैकै प्रदक्षण न टीका सो चंड के भाल मैं दीनो ता शब को पुन ता शब को उपजियो तह भाव एह कवने मन मैं लख लीनो मानो चंद के मंडल मैं शुभ मंगल आन प्रवेश कीनो कविता मिल कैसो देवन बडाई करी काल काकी एहो जग मात तै तो कड़ियो बड़ो पाप है दैतन को मार राज दीनो तै सुरेश हूं को बड़ो जस लीनो जग तेरो ही प्रताप है देत है असीस देज राज रिख बार बार ताहां ही पड़ियो है ब्रह्म कौच हूं को जाप है ऐसे जस पूर रहे हो चंड।

चंड चरित्र कवितन मैं बरनियो सब ही रस रुद्रमयी है। एक ते एक रसाल पयो नख ते सिखला उपमा सो नई है। कौतक हेत करी कव ने सत सैया की कथा ए पूरी पई है। जाहे न मित पड़े सुन।

0: राम रहीम प्राण राम रहीम दीन नमरान सुरन सागर वेद शिव है वाप के दिल का मैं ना जानियो ये जन्म के बाद तुम्हारी आ रही है जन्म मैं ना कहियो सब होए मैं दो रहा सागर द्वार कौ सागर द्वार कौ गयो तुहार द्वार गयो तुहार द्वार हे की लाज अबास गोविंद दास
1: जो की मरता जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो

देवी जो कि उस तद कथम जब जीवन जो कि अस तरणि चतनि जब जीवन चतनि अमर का चरणि चतनि जब तो भी हम का सिंह का दुखा जहां प्रति हुकूमत का सिंह का किया है होता है फ्री मुंडू मर दे पर नहीं किया है कोई कल पर बार मर लाल पर नहीं महान जो को माने वाली जब ये पर लाते जल कम हो नहीं आया तो मेरे जो ने बोल चनी जो मैं आया तो फिर मोह से चो लोग

अथ प्रेम कथा कथनम प्रेम कथा कथनम कवियो वाचन पै हर के संत कपड़ी सुनाऊ ना जो पै हो जो मां पढ़ी सुनाए कथा तन सुन पावे ना मत दुख दुवे जावे सब भैया पावे तन ना मत का लागे जब बहुत पति का जय तन सब को बजा मत को खंड की जो सकल सुन को बजा मत को जय के सुनत ये जय को पांच सो लो के छते यो से जय हम सुन मत यो सारे अवर सत्र को जय मन मटारियो अवर सो ब्रज मन है कस कदम के मन मत रे तन ना ने कर सोया जो ब्रज ना ने के

मोहिनी छंद जय जय देवी पावाणी पवखंडी दुर्गा सरबाणी केसरिया बाही गौ मारी पवखंडी भैरव उद्धारी अकलंका अत्रि शतराणी मोहिनी अंग सर्वंगलोकाणी रगतांगी सावी सावित्री परमेश्वरी परमा पावित्री तोतलिया जयवा गौ मारी पवरणी हरणी उद्धारी मृद रूपा पूपा बुद्धाणी जय जम्पै सुदंग सिद्धाणी जगधारी भारी।

0: संबद सतरह सहस पणिजय अर्ध सहस पुण तीन कहिजय भादव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पखियाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अपजो
1: हे गुरु जी का खालसा हे गुरु जी की फतेह खुशियां दे जकारे जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुर बार अकाल दे गते गे फतेह गुरपंथ खालसे दी दिना दिन चार दी कला रखनी सचे पातशाह जी महाराज।

हम जनक्षर का अवतार हम चस्य हम द्रोवे हम परिय हम तोवै हम जाति जिन सिखोवे हम सुमरक हम जाना मुकमत की सारण जाना हम च माया हम छाया हम कर जंत पाया हम बुझे ता दृश्य ज्ञान हुनक।